0: Sunrise Retro, London का Retro Asian Mix.
1: Attention!
2: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. Get up to 40% off this week, right up until the bank holiday. You can now get General Billamoria's Canteen, serving fresh, your favorite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Billamoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge, and up to 40% off when you order through the GB Canteen app. Offer valid until this bank holiday Monday. And conditions apply.
3: We got it at Selco.
4: At Selco Builders Warehouse, we've got a brand new loyalty program, Trade Rewards, created to give you consistent discounts every time you shop with us. With three tiers, bronze, silver, and gold, you can unlock bigger rewards as your monthly spend grows. So the more you spend, the more you could save. Find out more online or at your local Selco today. Selco Trade Rewards, with you for every job. Conditions apply.
5: Transforming your home is as easy as Dunelm. Thanks to Dunelm's summer savings, there's up to 50% off selected pieces, from furniture and mattresses to rugs, decorating and more. But hurry, must end bank holiday Monday. Save in-store, online, on the app and with free click and collect at Dunelm, the home of homes.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
0: लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो को सुनने के लिए शुक्रिया. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा. ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर.
7: लंदन रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro.
2: Hit of the hour with Sony Max. Every run matters. Every wicket counts. Get ready for the Women's Asia Cricket Cup. Watch exclusively every day from 3:30 p.m. on Sony Max. Sky 714, Virgin 806.
3: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: This is Sunrise Retro.
1: Mudhoo's Mayfair at the Dilly has reopened its doors with a stunning new makeover, with a brand new spectacular bar and lounge, which will make you gasp, wow! The main dining room follows on taking your breath away as you enter this palatial setting. It's not just the restaurant which has had a makeover, the menu has too. As well as the Mudhoo's classics, try some of the delicious newcomers, Saag Bharata, butter chicken chops and the delightful Nimbu fish. Or just relax in the bar lounge area with the baby grand piano playing, sipping a cocktail or two, where we will also be offering a smaller plates menu. Mudhoo's Mayfair at the Dilly, open daily for dinner. To book, call 0208 574 1897. Advanced booking advised for London's newest restaurant and bar lounge hotspot.
2: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise, where you can laze in luxury accommodation and kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: ये है सनराइज रेट्रो.
1: हिट ऑफ द आवर विद सोनी मैक्स. एवरी रन मैटर्स, एवरी विकेट काउंट्स. गेट रेडी फॉर द वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप. वॉच एक्सक्लूसिवली एवरी डे फ्रॉम 3:30 PM ऑन सोनी मैक्स, स्काई 714, वर्जिन 806.

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवाना।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: मुझे मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ.

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सुबह चैन आराम राती सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर